आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರತರ ಪರಮ ಆಪ್ತ ಪರಾತ್ಪರಾತ್ಮಕ.

0: आप सुन रहे हैं है, पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन। आपके साथ तबले पर श्री सोहन लाल मिश्रा साथ दे रहे थे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मारो।
1: यू आर लिस्निंग टू सितार रिसाइटल बाय पंडित बुधादित्य मुखर्जी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री सोहन लाल मिश्रा। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट, नाउ लिसन टू राग मारू।

0: अब तक आप सुन रहे थे पंडित बुधादित्य मुखर्जी का हिंदुस्तानी सितार वादन। आपके साथ तबले पर श्री मुकुंद भाले साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया।
1: यू वेर लिसनिंग टू सितार रिसाइटल बाय पंडित बुधादित्य मुखर्जी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री मुकुंद भाले। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आकाशवाणी धारवाड़ एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. कलाकार हैं कौशिक चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चित्तरंजन दुलोई. तो ये प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार कौशिक चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन music. Now listen to a tabla recital in Teen Taal by our next artist Kaushik Chattopadhyay, accompanying on the harmonium Chittaranjan Dalui. Now listen to a tabla recital in Teen Taal by our artist Kaushik Chattopadhyay.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कौशिक चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्तरंजन दोलोई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग भैरव में ख्याल गायन।

0: आशय कलाकार हैं ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जॉय दास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरव में ख्याल गायन, कलाकार ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय।
1: यू आर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल बाय योर आर्टिस्ट कौशिक चट्टोपाध्याय, एकॉम्पैनिंग ऑन द हारमोनियम चित्तरंजन दलुई। दिस इज रागम 24/7 anytime Indian music. This morning, we present a khayal in Rag Bhairo. Our artist this morning, Brajeshwar Mukhopadhyay. Accompanying on the tabla, Joy Das Gupta, and on the harmonium, Ratan Natta. Now, listen to a khayal in Rag Bhairo by Brajeshwar Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जॉय दास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भैरव बाय ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय, एकॉम्पैनिंग ऑन the tabla Joy Das Gupta and on the harmonium Ratan Natta. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित दिनकर कैकिनी का गायन. राग है सावणी केदार. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तुम हो प्रवीण. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं सोलह हो सिंगार किए सखी सजनी. In the program of Indian classical music, we present a vocal recital by Pandit Dinkar Kakani. Rag is Savani Kedar. Vilambit composition is set to Tilwada Tal and Drut composition in Teen Tal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग सावणी केदार। आपके साथ तबले पर संगत की पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर अनंत केमकर ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग पूर्वी कल्याण। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मिलन भयो है। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं धन धन भाग जागे।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग सावनी केदार बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय अनंत केमकर। And now we present Raag Purvi Kalyan by Pandit Dinkar Kankani. Vilambit and Drut compositions are set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिणी का गायन। आपके साथ तबले पर संगत की दीपक नेरूरकर ने और हारमोनियम पर बबन मांजरेकर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू वर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय पंडित दिनकर कैकिणी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दीपक नेरूरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय बबन मांजरेकर। This was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कल नाही पावे और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Pandit Madhup Mudgal. He first presents Rag Bhatiyar, in which he will present a Bada Khayal set to Vilambit Ektal. The lyrics are Kala Nahi Pave. This will be followed by a Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घूंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद राग बिलास खानी तोड़ी इन विच ही प्रेजेंट्स द बड़ा ख्याल। द लिरिक्स आर नीके घूंघरिया। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

0: अभी आप पंडित मधुक मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुक मुद्गल। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री समरजीत रॉय। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित जसराज का गायन. लीजिए सुनिए राग भीम पलास. विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं तन दीनो मन दीनो. द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं तुम मोरी मोतिन लर क्यों तोरी. In the program of Hindustani Classical Music, we are presenting vocal recital by Pandit Jasraj. Listen, Raag Bhim Palas. Vilambit Bandish set to Ektal, Bol, Tandino, Mandino. Drut Bandish set to Tintal, Bol, Tum Mori Mutin Lar, Kyun Tori.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग भीमपलास। तबले पर संगत कर रहे थे केदार पंडित और वायलिन पर विदुषी कला रामनाथ। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित जसराज प्रस्तुत कर रहे हैं राग मियां की मल्हार। विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं बाबा तोपे बरसत करीम रहीम। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं घन गर्जत बरसत बूंद बूंद।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग भीमपलास। अकंपनिंग हिम ऑन तबला केदार पंडित एंड ऑन वायलिन विदुषी कला रामनाथ। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम पंडित जसराज प्रेजेंट्स राग मियां की मल्हार। विलंबित बंदिश सेट टू एक ताल। बोल बाबा तोपे बरसत करीम रहीम। द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल। बोल घन गर्जत बरसत बूंद बूंद।

0: ये था राग मियाँ की मल्हार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन। तबले पर संगत कर रहे थे केदार पंडित और वायलिन पर थी विदुषी कला रामनाथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग मियाँ की मल्हार। विद दैट वी कंक्लूड वोकल रिसाइटल ऑफ पंडित जसराज, अकंपनीड हिम ऑन तबला केदार पंडित एंड ऑन वायलिन विदुषी कला रामनाथ। दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ AIR मुंबई।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी तदुपरांत काफी दादरा सुनवाएंगे. कलाकार हैं अंजना नाथ. आपके साथ तबले पर हैं औसित कुमार जाना और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी तदुपरांत काफी दादरा. कलाकार हैं अंजना नाथ.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen first to Khambaj Thumri, followed by Kafi Dadra. Our artist is Anjana Nath. Accompanying our artist on the tabla is Oshit Kumar Jana, and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Khambaj Thumri and Kafi Dadra, our artist Anjana Nath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी सुन रहे थे, तदुपरांत काफी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे अंजना नाथ। आपके साथ तबले पर थे औसित कुमार जाना और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं सुधेंदु हालदार। आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता।
1: You were listening to Khambaj Thumri and Khafi Dadra. Our artist was Anjana Nath. Accompanying our artist on the tabla was Oshit Kumar Jana and on the harmonium was Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Sarangi recital. Listen to a Sarangi recital in the rag Bageshri. Our artist is Shudhendu Haldar. Accompanying our artist on the tabla is Joy Dasgupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाग्यश्री पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुधेंदु हालदार, आपके साथ तबले पर थे जॉयदास गुप्ता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सारंगी रिसाइटल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट वॉज सुधेंदु हालदार। Accompanying our artist on the tabla was Joy Das Gupta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाषा मिश्रा का वायलिन वादन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी. मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं M.R. गौतम. राग है लाचारी तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं एरी लंगर तुरक. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं कैसे के जाऊं अपने ढिंगवा. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल द दुखां और सारंगी पर समद खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1993 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम. The rendition commences with the raag Lachari Todi. The accompaniment has been provided by Ismail the Dukhan on the tabla and Samad Khan on the sarangi. This was recorded in the year 1993.

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं एम आर गौतम। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय एम आर गौतम। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बागेश्री अंग का चंद्रकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बीत गए दिन रैन तुमरे कारण। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं अथक मन भायो रे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग चंद्रकौंस ऑफ द बागेश्री अंग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन। कलाकार थे M.R. गौतम। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला and Samad Khan on the sarangi. This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a vocal rendition in rag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma.

0: अभी आप पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी।
1: You were listening to a vocal rendition in Raag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma. Now listen to a sitar recital in Raag Bhairavi by Pandit Devrat Chaudhary.

0: अभी आप पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग भैरवी बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयश्री कुलकर्णी के स्वर में संत सोखा मेळा की भक्ति रचना।

जय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत भानुदास की भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं बाल माई।

संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे पाल माली। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना सौमिक शाह के स्वर में।

टॉमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास ने रची ये हिंदी भक्ति रचना।

कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत कारे के स्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति।